0: 那我们在谈三星杯松懈地那点不跟起来的大南北没那么细的音松懈地狂了三根宠物三根的音杯才穷到了那个金融城客三根宠物从你们就能把头肩拿修音那我们推到这些了里先拿修南客客三不写把太东方呢直接拿着修音来三不看三
1: 来接着了满街雨里
0: 了那满街雨人穷到了写把看那音呢
1: 啊我自己去训练音都讲了
0: 那是那李先生，吃这些呗，不生些么些呗，松些的，看上去受便宜呢。
1: 还是那是，工作些么些，松些年不的，等到年这里个，那日子迷茫个，做年那些呗，钱挣着了哒，下班之前那些呗，钱到这些了，提醒你钱挣着了哒，养殖出了哒，一种了呢，这边营养方面个物质来使用它，等就弄个年底来供给，下来呢那个物质来使用了，松些的皮子。अनि लोदी नंगे चनांतु चारगे ना शाबता अनि तामजे थामजे अनि तलांगा वदा लिकु यु मिन्दु सुजुता अनि तामजे थामजे अनि युसे गि जेसा थोबे मिन्दु सुगु इले
0: नेस थोजे
1: लेस लेस अनि तरिंग अरे थमदि तदांग अनि युरंग गुजि अनि थमदि छु थो मस न तोगता अनि तदरि सिगदि अनि सन्ग मान्यु जि होनां दा थमदि तुरतु जि सुगु इला
0: नेस न
1: तोगो ने तोगो सांगशे नंग सांगशे निमे जे सांगे तो नांदे从这边拉到，反正光兄弟三姐错了，错了到，三姐真穷到了，到家了，农民的你们接不拉到，走路拉，打个农行的，边地的边门桥的拉到，叫拦完了，叫送了，送完了，等级这些拉到，全部吃的拉，慢慢的到我住拉到，慢慢的吸的拉，边那修边到我住拉。那这边这个这个三个没用的，可能到天气的年头呢，俺们天没送来，光不门走到那修修单，可能到大早春天呢把车间那修修单，俺们可能到年大累积生意单，都是俺们春季的俺们下来干啥干那个，再来我呢，李主任面对修修嘛是嚷嚷说说下来的，有时跟全部三个多个面对修人了，
0: 那是了。
1: 那是那是，俺们这里打的三个蛮用的，可能在前几年年年头呢，俺们准备出头嘛，是不？可能在俺们身边亲戚家，他不吃的了呢，当然的，经常在我这里呢，准备就不用的了。
0: 那是他讲的修为。
1: 他平常俺们是啥家，还是他了，啥事情了说话，性格了说话，感觉呢，接不到，那么当容易吧？我对他特别的，俺们亲戚
0: 那是，那是他讲的修为。